अंडा अंडा कोमड़ी पसला कचा जा ठंडा हो कोमड़ी आधी का अंडा हो उत्तर सांगा निकाय पण मांगा दाऊ नका माला डंडा हो पसला कचा जा ठंडा हो कोमड़ी आधी का अंडा हो उत्तर सांगा निकाय पण मांगा दाऊ नका माला डंडा हो चला मजे न राहू सारे हसबू या दुनियेला चला मजे न राहू सारे हसबू।

0: कवरिया ओ कवरिया, ओए आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ कवरिया ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया,
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया होय होय होय ओ जाने सारी नगरिया,
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: न आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुधन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हा।

कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय हाय हाय कहाँ जान फंसाई मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, हाँ हाँ अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया, पढ़े लिखों से पाला, मीठी छुरी से मीठी

की दिखी छोरी बाबा कैसी गोरी गोरी पोती की दिखी छोरी करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी मिली छोरी तो हुआ निहाल छोरा गंगा किनारे बाला छोरा गंगा किनारे बाला।

जो करता है पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा।

0: देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो जलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ भाई?
1: हाँ तो हट जाए
0: हो जाए।

0: अच्छा,
1: अरे हाँ, वो चोर की शक्ल है गोरी।
0: तो क्या हुआ?
1: हो गया मिलना बहुत जरूरी।
0: चल पगली,
1: फिर सुनो तो आगे हमारी दिल की मजबूरी। तो जो मेरे करीब आया,
0: ओहो,
1: मेरे तन पे पड़ा जो साया।
0: फिर क्या हुआ?
1: यूँ समझो ना गले लगाया।
0: ची ची ची।

0: है पसीना।
1: बाप रे,
0: कल मैंने देखी अजब हसीना। प्यार में उसके धड़के मेरा दिल चलता है सीना धक धक धक। बात वो आई बड़ी अदा से, बोली क्यों हो खफा खफा से।
1: हाय मर जाऊं,
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे।
1: क्यों नहीं,
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम।
1: कौन?

0: कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो
1: नाना,
0: सुनो तो सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: इसलिए।
1: अच्छा
2: आए हैं तो काम भी बताइए,
0: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
2: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: देखिए तो क्या हसीन रात है।

0: पहले जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई,
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।

0: वाली मेम साहब।
1: हाँ, मैं।
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला ला बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया. म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए. रेडी 1 2 3 4